गलती सो रही बरस की वही घर पानी गई सरगे भूपति पानी पर मुसे खरुकी मैं सारी कसरी रुझाऊ।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: 98 51 18 89, सरिश्मा श्रेष्ठ मोबाइल नम्बर 98 60 58 89, पलाञ्चोक बेकारी साध्यो बाटे चौकी पछाडि भीमेश्वर कोल स्टोर सँगै।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: रेडियो सैलू सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: अनि देउता मानेनन् के हो फगाउनु पर्छ के हो
1: मन्त्र हान्नु पर्छ होला
2: मैले यता

0: यता त धेरै रिसाए पनि बोलेनन् खै
1: खै यति करलाण्डन नगाउने के हो गठे
2: उहाँ रियाली छ क्या
3: हे के भनौँ खै

मिका पाना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर्दा नारीले प्रगति पथ को।

आनन्द कन्द श्री सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम सित बोलिए श्री आनन्द कन्द सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय।